ध्यान दीजिएगा आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/saiyavachanamrit ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है

दिस इज नॉट ए सर्विस, ये कोई सेवा का काम नहीं है। इसलिए बालक क्या कि भगवान जो है वही माता पिता हैं, वही बंधु सखा हैं। आर वी एस्टैब्लिशिंग दिस रिलेशनशिप, क्या हम इस प्रकार का संबंध परमात्मा से स्थापित कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब परमात्मा आपसे रूठ भी जाए आप मना सकते हो जाके, भाई देखो परमात्मा तक जाने के कई रास्ते बताए गए हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिंपल सा रास्ता रख रहा हूं जो मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे साधुओं की वाणी है, हमारे साधु संतों के वचन है। कभी आपने बंदर देखा है? बंदर, एक बंदरिया और उसका बच्चा दोनों साथ बैठे हैं, अचानक से बंदरिया को कहीं जाना होता है, उसका बच्चा बंदरिया को कस के पकड़ लेता है और बंदरिया एक डाल से दूसरे डाल पे कूदती है, बच्चा गिरता नहीं है। नहीं देखा है तो जू में जाके देखिए आप, बंदरिया एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदती है, बच्चा गिरता नहीं है। बंदरिया एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग से, एक मकान से दूसरे मकान से, यहां से वहां टापती है, कूदती है, उछलती है, लेकिन बच्चा इतने कस के मां के गर्दन को पकड़े रहता है। बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ रही, बच्चा बंदरिया को पकड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ रहा है, उसी प्रकार से अगर इंसान भगवान को कस के पकड़ ले, कुछ भी हो जाए परमात्मा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप गिरेंगे नहीं कभी, यू विल बी ऑलवेज सेफ। गिरने का कोई चांस ही नहीं है, चाहे दुख हो या सुख हो, सर्दी हो या गर्मी हो, दिन हो या रात हो, सारा टाइम परमात्मा को पकड़ा हुआ है। क्या मतलब हुआ? भगवान की फोटो को लेकर जेब में डाल दो ना, किसी मूर्ति के साथ अपने आप को बांध दो ना, पकड़ने का अर्थ है परमात्मा की बात को समझना, सुन लेना, उस पर चलने का प्रयास करना। भगवान ने बोला ये धर्म का रास्ता है तो ये धर्म का रास्ता है, दैट्स इट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। राम भगवान आए एक मानव के रूप में, एक साधारण मानव के रूप में आपके सामने एक उदाहरण रख गए, एक उदाहरण स्थापित कर गए, एक एग्जाम्पल एस्टैब्लिश कर गए, हाउ टू लिव लाइफ विद मॉरल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार से जकड़ के रखें, पकड़ के रखें, उनके रास्ते पे चलें, धर्म के रास्ते पे चलें, और जीत धर्म की होगी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना बढ़े, विश्व का कल्याण हो, ये सारे शब्द रह गए हैं। धर्म की जय तब होगी जब आप धर्म पे चलने का प्रयास करेंगे तो, अधर्म का नाश तब होगा जब आप अधर्म से हटेंगे तो, सद प्राणियों में प्रेम तब बढ़ेगा जब आप प्रेम देना चाहेंगे तो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना बढ़े, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण कब होगा? जब हम कल्याणकारी काम करेंगे तो, हमारा सेल्फिश नेचर हटेगा तो, कि हमारा ध्यान संसार के वस्तुओं में नहीं, अपने ऊपर नहीं, परमात्मा के ऊपर जाएगा तो, लोक कल्याण की भावना हमारे भीतर आएगी तो, लोकान समस्तान सुखिना भवंतु, सारे विश्व में सभी सुखी हों, ऐसी प्रार्थना हमारे वेदों में आती है। एक बंदरिया की तरह बंदर का बच्चा जैसे पकड़ता है बंदरिया को, उसी प्रकार से

है। अगर हम परमात्मा को पकड़ लें, परमात्मा के रास्ते पे चलने का प्रण कर लें, संकल्प कर लें, वी विल रीच द गोल, हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता बहुत सिंपल है, बहुत साधारण। आपने देखिए बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, बिल्ली क्या करती है? छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है, उसे पता नहीं कहां जाना है। बिल्ली उस बच्चे को अपने मुंह में दबोच के यहां से वहां कूदती है, भागती है, चलती है, फिरती है। बच्चे को मालूम नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। बच्चे को पता नहीं है कि माँ मुझे कहां ले जा रही है। बच्चे को पता नहीं है मैंने माँ को पकड़ना कैसे है, माँ के पीछे जाना है। बंदरिया का बच्चा तो बंदरिया को पकड़े हुआ है, यहां तो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है और वो बिल्ली अपने मुंह में पकड़ने जा रही है। उसी प्रकार से आप अगर अपने आप को परमात्मा को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, इफ यू कंप्लीटली एंड एब्सोल्यूटली सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन फीट ऑफ द लॉर्ड, तो फिर क्या चाहिए आपको? जब आपने अपने को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, परमात्मा आपको उठा के यहां से वहां ले जाएंगे। उनको मालूम है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, दुख आया सुख आया कुछ भी आए, कोई भी समस्या है, डजंट मैटर। हम बोलते हैं भगवान मैं तो आपका हूं, मैंने आपको समर्पित कर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में सरेंडर को लेकर, समर्पण को लेकर कितना कुछ कहा गया, आप सब जानते तो हैं, कई बार सुन चुके हैं पहले भी आप। अपने आप को परमात्मा को सौंप देना, लेकिन थोड़ी अनहोनी हो जाए, गुस्सा आता है, भगवान मैंने तो आपको सरेंडर किया था, ये कैसे हो सकता है? यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर मी, आप मेरे तो ख्याल नहीं रखते हो, सही बात है या नहीं? अरे बंधु, आप नाई के पास जाते हैं बाल कटाने के लिए, नाई बोलता है सर नीचे करो, आप सर नीचे करते हैं, वो आपके सर पे कैंची चला रहा है, उस्तरा चला रहा है, आपके बाल काट रहा है, हाथ में चाकू है जिससे आप गर्दन भी कट सकती है, लेकिन आपको कभी डर लगता है? हैं? आपका पूरा विश्वास है वो आपको गलत जगह चाकू नहीं मार देगा आपको। आप बस में जाते हैं, टिकट लेके बैठ जाते हैं, आप पूछते हैं बस ड्राइवर से, भैया ठीक जगह ले जा रहे हो? नहीं, आपका पता है ठीक जगह ले जाएगा, विश्वास है। आप यहाँ से विदेश जाते हैं, प्लेन में बैठते हैं, आपने कभी देखा है पायलट को? आपको पता भी नहीं होता है कौन पायलट है, खाली अनाउंसमेंट में सुनते हैं आई एम कैप्टन सो एंड सो, लेकिन आपको विश्वास है वह आपको सही रास्ते से ले जाएगा, उड़ान में तकलीफ नहीं होगी, आपको यहां से जहां जाना है वहां तक ले जाएगा, आपको भारतवर्ष की पावन भूमि में सही जगह पर उतारेगा, विश्वास है आपको? आपने पूछते भैया तूने पेट्रोल भरा नहीं भरा प्लेन में? मैं धक्का नहीं मारूंगा, पूछते हैं आप? आप पूछते हैं तेरे को रास्ता याद है भैया? जब आप नाई पे विश्वास कर सकते हैं, बस ड्राइवर पे विश्वास कर सकते हैं, पायलट पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा पे नहीं कर सकते, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, संसार को बनाया है, संसार का बनाने वाला, क्या आपको यह लगता कि आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो केवल आपके अपने ही कर्म बोल रहे हैं? आपके कर्म आपके सामने आ रहे हैं, किसी की इच्छा नहीं। औरों को दोष देना बंद करके परमात्मा से जाने का रास्ता खोजिए। खोजने से रास्ता मिलेगा, नॉक डोर विल बी ओपन्ड।

to the will of the God. परमात्मा के संकल्प के सामने अगर आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं आप बोलते हैं भगवान मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं मुझे नहीं पता मेरे क्या ठीक है क्या गलत है मुझे कुछ नहीं पता आई एम जस्ट एट योर फीट मैं आपके चरणों पर बैठा हूं और आप मुझे अपने चरणों में ले लो परमात्मा से आप प्रार्थना कर रहे हैं शरण में ले लो सही अपने शरण में ले लो आपका मालूम है विभीषण जब लंका छोड़ के राम जी के शरण में आ गया राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया वहीं बैठे बैठे रामेश्वर की धरती पर भारत की पावन धरती पर पवित्र भूमि पर किसने प्रश्न किया महाराज आपने विभीषण को तो लंका का राजा बना दिया और अगर कल को रावण भी आपके शरण में आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे एक देश के दो राजा कैसे हो जाएंगे आप तो शरण में आने वाले की रक्षा करते हैं अगर रावण आपके शरण में आ जाता है तो क्या करेंगे फिर आप राम बोले मैंने सब सोच के किया है मैं भरत से कहूंगा अयोध्या को दे दे इतना विश्वास था भाई के ऊपर मैं केवल भाई को बोलूंगा कि पूरा राज्य उसको दे दे पूरा साम्राज्य उसको दे दे खाली मुझे बोलना है कि आप इतने दावा से इतने दावे के साथ अपने भाई के बारे में बोल सकते जब भगवान के शरण में जाओ ना भगवान बिकम रेस्पॉन्सिबल ही इज रेस्पॉन्सिबल एज इट इज लेकिन भक्त जब बोलते हैं परमात्मा मैं आपके शरण में आ गया हूं अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए तो परमात्मा को आपका ख्याल रखना पड़ता है चाहे आपके जैसे भी कर्म रहे हों चाहे आपके कितने भी गंदे कर्म रहे हों लेकिन एक बार उनके शरण में पहुंच जाए तो उसको आपकी देख रेख करनी पड़ेगी आपका ख्याल रखना ही पड़ेगा दैट इज द प्रॉमिस ये वचन है परमात्मा का श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है तो फिर हम कोशिश करें क्यों नहीं जय श्री